0: वैसे ये भंगड़ा बीट वाले गाने दा ना स्वाद अपना ही है जिन्ना मर्जी तुसी कोई होर गाना ला लो जदों एक ऐसे गाने वजदे ने तां मल्लो मल्ली यू नो थोड़ा जा खून जिहड़ा है थोड़ा जा डबल रफ्तार दे नाल चलना शुरू हो जांदा दौड़ना शुरू हो जांदा डू यू एग्री एग्री करदे हो मैनूं लगदा है ना सतनाम जी सत श्री अकाल स्वागत की हाल चाल हां जी हां जी हेलो आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी फिर दोबारा मिलायो ठीक है जी सतनाम जी की आवाज जी है मेरे तक तो पहुंची थी थोड़े तक पहुंची फिलहाल 905-564-444 प्रमोद जी फिर दोबारा कॉल कर लियो मेनू इंतजार रहेगा थोड़ी कॉल का गिल स्वीट फैक्ट्री प्योर वेजिटेरियन लाइव केटरिंग फॉर एनी ओकेजन मशीन मेड समोसे अवेलेबल ने हुण सो ऑल स्वीट्स जिहड़े ने कैनेडा दे विच जिन्ने भी थानू स्वीट्स दी थोड़ी जी यू नो क्रेविंग हो रही है वो थानू मिल सकते ने लाइव फूड ट्रक केटरिंग सारी ही ओकेशंस वास्ते 6 लोकेशंस तो थानू सर्व कर रहे ने 2 इन्हां दीआं लोकेशंस कैलगरी दे विच ने 5 चलो फ्रेशको दे विच ने सो इन्हां दे तुसी जदों चलो फ्रेशको दे विच शॉपिंग करदे करदे भुखा लग्गी आई तां फिर गिल्स स्वीट फैक्ट्री ते इक गेड़ा की लाणा उत्थों लंघोगे तुसी तुहाडे अपने आप ही दिल मल्लो मल्ली करेगा कि हुण समोसे भी पैक करा लिए हुण मना ए वी कर लिए हैड ऑफिस फोन नंबर नोट कर लो तुसी तां कि तुसी लाइव केटरिंग वास्ते ऑर्डर करना होवे तां नंबर थोड़े कोल होवे 905-799-2616 नंबर है जी गिल स्वीट फैक्ट्री वाले का 2131 विलियम पार्कवे यूनिट नंबर 3 ब्रैम्पटन विखे लोकेशन है जी ते इस लोकेशन ते जाके तुसी ऑर्डर कर सकते हो ते अपनी जिहड़ी केटरिंग करानी है वो वधिया वधिया करवाई जा सकती है हेलो जी सत श्री अकाल 1695
1: चांदनी
0: रात चांदनी रात
1: अच्छा ये पता की पिछले साल सेंचुरी ऑफ द सॉन्ग सी पाकिस्तानी अपना फिल्म विच
0: मौसम खिड़दा जा रहा है देखिया है कि ड्राइवेज क्लीन हो रहे ने सारे काम जिहड़े चेते आ रहे ने कि कोई भी काम कराना है तो मौसम जो अच्छा होवे धुप्पां शुप्पां लग जाण वधिया तो फिर सिटी परमिट्स थोनो है ओमकार होम्स पॉल ग्रेवाल रेनोवेशन काम करके देंदे ने जी इंक्लूडिंग द ड्रॉइंग्स गार्डन सुइट्स बनवाने होन लीगल बेसमेंट बनानी होवे अपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ने है कंप्लीट कर चुके ने ओवर 20 गार्डन सुइट्स इन 2025 बिल्ड करदे ने कस्टम होम्स कोई भी तरह का कमर्शियल जॉब्स ऑफिस रेस्टोरेंट्स स्पेशल डिस्काउंट्स ने होम रेनोवेशंस ते इंक्लूडिंग $5,000 ते जे इफ यू बुक योर लीगल बेसमेंट या गार्डन सुइट इन द मंथ ऑफ वैसे हुण पुछे हुण इन द मंथ ऑफ केड़े क्योंकि मई का लिखा हुआ है पर आई एम श्योर कि हुण भी कंटिन्यू कर रहे होंगे इस ऑफर के नाल 416-817-3600 नंबर तुसी फिर दोबारा नोट करो 416-817-3600 नंबर है जी ओंकार होम्स तो पॉल गरेवाल होरां दा जरूर कॉल करके इन्हां तो वधेरे जानकारी लेती जा सकती है अच्छा जी कैनेडा डे सेल कैनेडा डे बहुत अहमियत रखता है साढ़े वास्ते जिन्हें भी असी कनेडियन है साढ़े वास्ते ब्रैम्पटन जिहड़ा है वो लैके आया जी कैनेडा डे की सैलीब्रेशन चिंगूजी पार्क के विच सो सैलीब्रेट करो कैनेडा डे इन ब्रैम्पटन विद कंट्री स्टार ली ब्राइस कंट्री बैंड इमरसन ड्राइव चिंगूजी पार्क से लाइव कंट्री म्यूजिक होएगा फैमिली फ्रेंडली प्रोग्रामिंग होएगी चिंगूजी पार्क के विच July 1st जिहड़ा इंजॉयमेंट की जा सकती है सिक्योरिटी मेजर्स मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यह उपराला कर रहे हैं जी यह थोड़े वास्ते ब्रैम्पटन एनुअल कैनेडा डे सैलीब्रेशन जी है चिंगूजी पार्क के वेनसडे July 1st हो जा रही है अपनी फैमिलीज में लेके आओ कम्यूनिटीज पहुंचन टूगैदर वील हैव फुल डे ऑफ लाइव एंटरटेनमेंट फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज फूड फायरवर्ड एवरीथिंग विल बी देयर लेकिन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है सो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी सेफ्टी तो सिक्योरिटी सो 12 बजे तो लैके राती 10 बजे तक सो दोपहरे 12 बजे ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੂਡ ਦੇ ਟਰੱਕਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਟਸ ਐਨ ਆਫ ਫੋਰ ਦੈਮ ਫੋਰ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਰਨ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚੰਗੋਜ਼ੀ ਪਾਰਕ 9050 ਬ੍ਰਮਲੀ ਰੋਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੋ ਜੁਲਾਈ 1 ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੋ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਸੇਲ ਡੇ ਸੇਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ ਨੇ ਸੋ 6685 ਟੋਂਕਨ ਰੋਡ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਡੈਰੀ ਅਤੇ ਟੋਂਕਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੇਲ ਸੋ ਬਿਗੈਸਟ ਸੇਲ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸੇਲ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਚਤ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰਨੀਚਰ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ ਫਰੀ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਗਿਫਟਸ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੁਣੇ ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਔਫਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਨਾਲ ਫਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਫਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 6472620006472620000 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਵਾ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਿਲ ਸਕਣ ਸੋ 6472620000 40 ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੱਛਾ

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647 702 V23 license number 10394।
1: तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोस, ते हाँ पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
2: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 647-446-1616। उमरप्रीत चावला

क्या बात है मित्रों, मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दित्ती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी। बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकदा, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकदा। ते कहिंदी है गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकदा। कहिंदी है जे तुसी वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है उह भी बड़ा सही हुंदा, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर है, जिन्हां ने पैट रखे हुए है, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा है, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा है, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण। ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने, तुहाडा की कहना है। 905-673-3337 एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच ये चीज़ आई है। कहिंदी है बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदां ही बस एक जाली समाइल नहीं हुंदी, एक फेक समाइल, तुसीं बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा उह हासा नहीं आ रहा, बस तुसीं समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जांदा। आराम नाल बैठे हो बस इदां ही समाइल वाला मूँह बना के देखो, ते उह तुहाडे चेहरे ते तुहानू उहदा अहसास हुंदा, तुहानू पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ।

0: गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-7333 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।
1: महादेव को कहते सदाशिव निरंतर।

0: सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम् शिव उवाच श्रणु देवक्षा कुंजिका स्तोत्र
1: चुन्नी मेहंदी जागो सिदोली तक का सजावट का सामान भी मिलेगा 30 मेलिनी ड्राइव यूनिट 9 एंड 10 ब्रैम्पटन टेलीफोन 905-799-9400
0: दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम।

पिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। आप समर को एंजॉय कर रहे हो। अभी जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को उन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब अगर आप किसी भी किस्म की, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए प्रिंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस आप mastercollisiondepot.ca पे और mastercollisiondepot.com पे जाइए। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। लंदन के इलाके में रहते हैं, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप mastercollisiondepot पे जाइएगा। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी टीम्स हैं बहुत सारी, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। और जानकारी के लिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए, आज ही उनको कॉल कर लीजिए। 416-524-604-1652-4670 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाती हूँ। फिल्म 1964 की थी, तो उसी का गाना आपको सुनाते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो जरूर आप घूमने निकलेंगे। जुलाई फर्स्ट है, कैनेडा डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: मुड़के नहीं हो जमना मामा कर पंजाब की।

जीजा कैसा सानू दिखे देख निकाले बंटी लाल की बंटी बज गई जा वड़ा पटियाले मोटी बाग पे बारा दरी दे खड़ गया बिच बकाले तुरदा तुरदा पहुंच गया बाजार जुतियां वाले इधर मैं बरांडे वेके उधर वेके नाले देखी सारी दुनिया खुशे

ना पानी छुटिया हो गई शिकर दोपहर, चलो इस तरह अगले शहर। गड्डी चलती जल्दी आंदे जाते शहर, मुड़के नहीं यमुना मामा कर पंजाब।

फिर प्रिया हम ध्याने ना कोई जाने ना पहचाने कोई जराबा कोई प्रेशर कोई बुने दुनिया ना आगे अधीरत गुंजा बिचा तो मामा नैना चले पुत्रा अगले शहर चलती जाती आंदे जाते शहर मुड़के नहीं जमना मामा कर पंजाब की सैर।

जी हाँ, एक बार फिर। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर लीजिए और हमें अपना ऐड दे दीजिए अपने बिजनेस की। तो 6477737640 पे आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब ये कनाडा डे आने वाला है, तो कनाडा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ थोड़ी आपको वो आपको नहीं शायद पता होती हैं, पता भी होती हैं और कुछ याद करा दी जाती हैं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिए 519-542-1260। तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सारी गाना आपने मैंने मैंने चुना है मौसम के, अब आपको गाने सुनाएंगे। तो कनाडा में भी मनाया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे शहर में वेडनेसडे को है कनाडा डे, तो इस ग्राफ में भी बहुत सारी इवेंट होंगी। तो शाम भी शो फ्रॉम द कैपिटल विद परफॉर्मर्स फ्रॉम मॉक्टन विनीपेग, आर्टिस्ट विल जॉइन देयर वॉइस एंड देयर टू सेट अवर लव फॉर अवर कंट्री एंड द प्राइड ऑफ कॉलिंग इट होम कैनेडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे जो सिंगर होंगे, एडम बॉल्डविन और बहुत सारे दूसरे सिंगर भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होगा। तो कनाडा डे रैप्स अप, फायरवर्क्स होंगे शाम को 8 बजे और इवनिंग शो होगा 8 से 10 बजे तक। शहरों में कनाडा डे फायरवर्क्स होंगे, आप अपने शहर में अपने वेबसाइट पे जाकर के देखिए, सिटी वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं वेडनेसडे को कनाडा डे। तो फिर पार्लियामेंट हिल पे होंगी 10 बजे सेरेमोनियल गार्ड बैंड, 11 AM द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स पाइप्स एंड ड्रम्स, 11 फिर वही मीट म्यूजिकल राइड हॉर्सेस, 1:30 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड 2 PM to 3 PM 742 एयर कैडेट स्क्वाड्रन म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्नोबर्ड्स एरियल शो। तो इसी तरह से ओटावा में तो इस तरह से सारा जो कनाडा डे की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो दूर से तो फिर अभी कनाडा डे में नियाग्रा फॉल में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, फायरवर्क्स होंगे। तो आइए अब प्रोग्राम को ले लेते हैं। के लिए बहुत ही बढ़िया गीत मैंने चुना है, तो होना तो अच्छे मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का आउटडोर फर्नीचर चाहिए और बारबेक्यूज, खास करके आजकल समर है, तो आप topchoiceelectronics.com पर जाकर उनकी जानकारी लीजिए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में भी उनकी लोकेशन है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो एक बार फिर से आपका शर्मी और मैं हूँ आपकी होस्टिरा। तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, और इस हफ्ते आपको एक टीम वाली है कनाडा डे की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कनाडा डे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। और कि ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1st 1867। ऑन दिस डे द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट ज्वाइंड द सेपरेट कॉलोनीज ऑफ
1: Get up to $5 cash purchase bonus on other road models. Sun.ca for details.

से रूठी है, चैन लूटा है, नींद लूटी है, ऐसे मौसम में सूती है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।

पे हंसी आएगी, ये आएगी तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये आन हो या आपन हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। देखना कितनी ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों

0: कभी पहले तो लाज आती है, बाद में कोई मान जाती है।
1: जी हाँ, तो 1972 में कॉन्वेंट ऑफ थंडर मारा तो मालिक यहाँ तो उनका बहुत बढ़िया मूवी था। मैं थिएटर में जाकर किंगडम में देखी थी ये फिल्म, तो काफी सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये मूवी देखी होंगी, तो आपको वो सारा कुछ एक मूवी सी बन जाती है दिमाग में। तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम कैनेडा डे क्यों मनाते हैं। कैनेडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1, 1867। On this day, the British North America Act joined the separate colonies of Nova Scotia, New Brunswick, and the province of Canada, now Ontario and Quebec, into a single country known as the Dominion of Canada. Though originally called the Dominion Day, the holiday was renamed Canada Day in 1982. Beyond the historic milestones, Canadians celebrate the national holiday for several reasons. तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, अपना देश को भी हम याद करते हैं, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कनाडा एक ऐसा देश है यहाँ पे हम सभी को को कि अपने को हम मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो अब आपके लिए कल्याणपुर का गीत सुनाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सभी सिंगर्स को हो चुके हैं उनको हम याद करते रहें, और प्रेजेंट जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी भी हम कदर करें, उनको भी हम तो उनका भी हम कदर करें, उनके भी गाने हम सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ होते हैं, तो आजकल जैसे लोगों को गाने पसंद हैं वो अभी कैसे गाए जाते हैं, तो बहुत सारे नए से आ रहे हैं आगे, तो उनको अभी हम जरूर गाने सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल। मैं कोशिश करती हूँ आपको

0: ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ ਜੋ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे क्या है कि उनका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है, लोगों की लाइन लगी रहती है। वहाँ पे एक फायदा है आपको, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। मूव होना है तो आप मूविंग के लिए आप जा सकते हो, HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सामान मूव करते हैं। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए 416-524-7046-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको कोलिजन का काम करवाना है, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का बेटी बेटी।

तेरे दम कदम से हुआ शिकाना, तेरे दम कदम आशिकाना, नजारों में ये दिल रुबाई न होती।

0: जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सुआदा पला। एक बार फिर से हैप्पी कनाडा डे, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। एंड आप सभी बुधवार को होगा तो छुट्टी होगी, आप खूब एंजॉय कीजिएगा अपने अपने शहर में जो भी कनाडा डे एक्टिविटीज होंगी। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सुआदा पला। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन।
1: नमः नमः।

0: बनाए न होती खुद।
1: जी हाँ, तो अब आपके वो ये गीत सुनाते हैं, रात नए थोड़ा सा नए वक्त सुनाते हैं, तो आपसे गा लेते, तो एंजॉय द सॉन्ग।

हाँ जी जरा एक वेबसाइट नोट करो afcgrocery.com जी एशियन फूड सेंटर की ब्रांड न्यू वेबसाइट जिथों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी मठियाइयां ताजियां सब्जियां फल फ्रूट इंडिया वाले भांडे सजावट का समान सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना हुण एशियन फूड सेंटर की इस वेबसाइट ते देखो $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे विजिट afcgrocery.com

0: क्विक नाम नंबर 9 ऑटो सेल्स पिछले 35 साल तो किसी भी तरह दी इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार एसयूवी वैन नु बेस्ट प्राइस ते बाय करन लई और ग्रेट सर्विस लई कॉल करो 905-450-0009 यानी 905-450-0009 या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca।
1: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 75 ਪਲੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਡੀਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫੁੱਲ ਔਨ ਟੇਸਟ ਦਾ ਕੰਬੋ 50 ਪਲੱਸ ਟੌਪਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਿਟ ਪੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ ਸਵੀਟ ਚਿਲੀ ਮੈਂਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਪੀਜ਼ਾ
2: ਜੂਸੀ ਅਤੇ ਸਪਾਈਸੀ ਵਿੰਗਸ 25 ਫਲੇਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰੋ
1: ਲੋਡਡ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬਾਈਟ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ pizzadepot.ca ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ
2: ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਐਟ pizzadepot.ca ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ pizzadepot ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਟੌਪਿੰਗਸ ਨਾਨ ਸਟਾਪ
3: आज खुश तो बात हो गई था
4: ओ ता होना ही है जब तक ढिलो वीडियो दा नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे ऐ नकदा बनदा ही है
3: हां मेरे पास बिल्डिंग है प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंस है बंगला है गाड़ी है
4: बॉलीवुड मूवीज ने टीवी शोज वेब सीरीज हिंदी पंजाबी लाइव टीवी चैनल्स एंजॉय करने नो वर्ल्ड्स बेस्ट ते हाईएस्ट क्वालिटी वाला आईपीटीवी बॉक्स है ते नाले ढिलो वीडियो कोल गुरबानी रेडियो भी है ते डिलीवरी बिल्कुल फ्री होर दस क्या चाहिदा
5: चल क्या रहे यहां पर
4: ओ पाजी सेलिब्रेशन 40 इयर्स इन एंटरटेनमेंट बिजनेस
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन
4: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com होर कोई सेवा

0: घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: तो यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA। चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन।
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance, we also ship cars, Kailor transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long Distance Moving Specialist,
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, haan bhai, ab badi highway da door pori hoi khadi hai, ki gal
7: a? Accident ho gaya, car da tow truck nu phone kar lagi a.
6: Oh, tow truck chhad, main sidha karda Skydome Auto and Body Center wale nu. Naale main truck da body work vi karaun jana utte.
7: Aho, main suniya Skydome wale sari insurance company nal deal kar diya. Naal hi hun meri car da emission test kar do na, nave tire pawa diyo. Udharon beauty parlor jana, udharon car da panga. Aa shedi karo, Skydome wale nu phone karo, 905-874-9878.
6: Bhai, ghar wali beauty parlor to nikli hove te car Skydome to. Sone te swage wali gall hundi je.
8: एशियन फूड सेंटर दिया सारिया ही लोकेशन ते 26 जून तो 5 जुलाई तक लग चुकी है कैनेडा डे सेल। 4 पाउंड डीप बेसन 499, 900 ग्राम रेड लेबल टी 1299, 10 पाउंड इंडिया गेट प्रीमियम राइस 1299, ताज आटा 1199। इस तो इलावा ताजे फल फ्रूट, इंडिया वाले पांडे, दाला, सब्जियां, मिठाइयां आते होर भी सब कुछ मिलता जी अंडर वन रूफ। विजिट एशियन फूड सेंटर, कॉल 416-740-3262।
9: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकदे हो चमकौर सिंह नाल 416-662-1313 416-662-1313।

0: ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਜਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
1: Offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cart, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton. Long distance moving specialist, HK Movers.
3: HK Movers.
4: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA। चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cart, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
3: HK Movers.
6: Oh, hello. अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल
7: आ? एक्सीडेंट हो गया कार दा, टो ट्रक आया नु फोन कर लगी आ।
6: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर वाले नु, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते।
7: आहो, मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनी ने डील कर दिया, नाल ही हुन मेरी कार दा एमिशन टेस्ट करा दो, ने नवे टायर पवा दियो, उधरों ब्यूटी पार्लर जाना, उधरों कार दा पंगा, आ छेदी करो स्काईडोम वाले नु, फोन करो 905-874-9878।
6: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काई तो सोने दे सुहागे वाली गल हुंदी जे।
8: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच, अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकते हो चमकौर सिंह नाल, 416-662-1313, 416-662-1313।
9: ब्रैम्पटन दे विच इक्को एक नाम, नंबर 9 ऑटो सेल्स, पिछले 35 सालां तो किसी भी तरह दी इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार, SUV, वैन नु बेस्ट प्राइस ते बाय करन लई और ग्रेट सर्विस लई कॉल करो 905-450-0009, यानी 905-450-0009, या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca।
10: हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ, ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖੋ। $100 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪਾਓ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਨ ਆਲ GTA ਏਰੀਆਜ਼, ਫ੍ਰੀ ਕਰਬਸਾਈਡ ਪਿਕਅਪ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਆਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਔਨ ਸੇਮ ਡੇ। ਵਿਜ਼ਿਟ afcgrocery.com।

0: घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: ओ यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, रामटर्न.
2: HK Movers, home, offices, apartments.

0: से कभी बात बिनती चौपाई
1: कभी करो हाथ पे इच्छा पूर्ण होए जिसकी इच्छा मन नहीं हमारा
2: स्वागत है
1: आप।

0: कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क वे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-7333 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: महादेव को सदाशिव निरंकारी।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। आप समर को एंजॉय कर रहे हो। अभी जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को उन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब अगर आप किसी भी किस्म की, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए प्रिंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 9057990045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस आप मास्टर कोलिजन डिपो डॉट सी ए पे और मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पे जाइए। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। लंदन के इलाके में रहते हैं, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो एचके मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी टीम्स हैं बहुत सारी, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। और जानकारी के लिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए आज ही उनको कॉल कर लीजिए। 416-524-8004-1652-46704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाती हूँ। फिल्म 1964 की थी, तो उसी का गाना आपको सुनाते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो जरूर आप घूमने निकलेंगे। कैनेडा डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: मुड़के नहीं हो जमना मामा कल पंजाब।

निकाले बंटी लाल की बंटी बज गई जावड़ा पटियाले मोती बाग के बारा दरी खड़ गया बिच बकाले तुरदा तुरदा पहुंच गया बाजार जुतियां वाले इधर मैं बरांडे वेके उधर वेके नाले देखी सारी दुनिया खुशे।

ना पानी छुपिया हो गए टिकट पैर, चलो इस तरह अगले शहर। गड्डी चलती जल्दी आंदे जाते शहर, मुड़के नहीं आ यमुना मामा कर पंजाब की सैर।

फिर प्रिया हम जाने ना कोई जाने ना पहचाने कोई जराबा कोई दुनिया ना आ गया।

जी हाँ, एक बार फिर। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर लीजिए और हमें अपना ऐड दे दीजिए अपने बिजनेस की। तो 6477737640 पे आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए कनाडा डे आने वाला है, तो कनाडा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ थोड़ी आपको सारी वो आपको नहीं शायद पता होती हैं, पता भी होती हैं और कुछ याद करा दी जाती हैं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिए 519-542-1260। तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सारी गाना आपने मैंने चुना है। मौसम के से अब आपको गाने सुनाएंगे। तो कनाडा के भी मनाया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे बड़े शहर में वेडनेसडे को है कनाडा डे, तो इस ग्राफ में भी बहुत सारी इवेंट होंगी। तो शाम भी शो फ्रॉम द कैपिटल विद परफॉर्मर्स फ्रॉम मॉक्टन विनीपेग आर्टिस्ट विल जॉइन देयर बॉयज एंड देयर टू सेलिब्रेट फॉर आवर कंट्री एंड द प्राइड ऑफ कॉलिंग इट होम कैनेडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे जो सिंगर होंगे एडम बॉल्डविन और बहुत सारे दूसरे सिंगर भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होगा। तो कनाडा डे रैप्स अप, फायरवर्क्स होंगे शाम को 8 बजे और इवनिंग शो होगा 8 से 10 बजे तक। शहरों में कनाडा डे फायरवर्क्स होंगे, आप अपने शहर में अपने वेबसाइट पे जाकर के देखिए सिटी वेबसाइट, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं वेडनेसडे को कनाडा डे। तो फिर पार्लियामेंट हिल पे होंगी 10 बजे सेरेमोनियल गार्ड बैंड, 11 AM द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स पाइप्स एंड ड्रम्स, 11 फिर वही म्यूजिकल हॉर्सेस, 1:30 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड 2 PM to 3 PM 742 एयर कैडेट स्क्वाड्रन म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्नोबर्ड्स एरियल शो। तो इसी तरह से ओटावा में तो इस तरह से सारा जो कनाडा डे की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो फिर अभी कनाडा डे में नियाग्रा फॉल में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, फायरवर्क्स होंगे। तो आइए अब प्रोग्राम को ले लेते हैं। के लिए बहुत ही बढ़िया गीत मैंने चुना है। तो होना तो अच्छे मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का आउटडोर फर्नीचर चाहिए और बारबेक्यूज खास करके आजकल समर है, तो आप topchoiceelectronics.com पर जाकर उनकी जानकारी लीजिए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में भी उनकी लोकेशन है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका सामी और मैं हूँ आपकी होस्ट रा। तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, और इस हफ्ते आपको एक टीम वाली है कनाडा डे की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कनाडा डे की शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1867। ऑन दिस डे द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जॉइंड द सेपरेट कॉलोनीज ऑफ नोवा
1: Get up to $5 cash purchase bonus on other road models. Sundot's for details.

होठों पे हंसी आएगी, ये आएगी तेरे होठों पे हंसी आएगी। ध्यान हो या दिल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों

0: ही पहले तो लाज आती है, बाद में कोई मान जाती है।
1: जी हाँ, तो 1972 में कॉपीराइट हुआ था अंजन मारा, तो मालिक की आंखों का बहुत बढ़िया मूवी था। मैं थिएटर में जाकर किंगडम में देखी थी ये फिल्म, तो काफी सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये मूवी देखी होंगी, तो आपको वो सारा कुछ एक मूवी सी बन जाती है दिमाग में। तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम कनाडा डे क्यों मनाते हैं। कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन which occurred on July 1, 1867. On this day, the British North America Act joined the separate colonies of Nova Scotia, New Brunswick, and the province of Canada, now Ontario and Quebec, into a single country known as the Dominion of Canada. Though originally called Dominion Day, the holiday was renamed Canada Day in 1982. Beyond the historic Michael Stones, Canadians celebrate the national holiday for several reasons. तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये जानना हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, अपना देश को भी हम याद करते हैं, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कनाडा एक ऐसा देश है यहाँ पे हम सभी को की अपने को हम मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो अब आपके लिए कल्याणपुर का गीत सुनाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सभी सिंगर्स को हो चुके हैं उनको हम याद करते रहें, और प्रेजेंट जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी भी हम कदर करें, उनको भी हम तो उनका भी हम कदर करें, उनके भी गाने हम सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ होती है, तो आजकल जैसे लोगों को गाने पसंद है वो अभी कैसे गाए जाते हैं, तो बहुत सारे नए से आ रहे हैं आगे, तो उनको अभी हम जरूर गाने सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल, मैं कोशिश करती हूँ आपका भी गाने सुनाऊं जो कम सुनने को मिलते हैं। तो आइए अब, अगर आपने कनाडा डे की आप अपनी सिटी में देखिए क्या क्या इवेंट्स होने वाली हैं।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है खैर संसार में। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे क्या है कि उनका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है, लोगों की लाइन लगी रहती है। वहाँ पे एक फायदा है आपको, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेना है, टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। मूव होना है तो आप मूविंग के लिए आप जा सकते हो, एच के मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सामान मूव करते हैं। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए 416-524-6704-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको कोलिजन का काम करवाना है, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का बेटी बेटी।

अगला एक बार फिर से हैप्पी कनाडा डे, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। एंड आप सभी बुधवार को होगा तो छुट्टी होगी, आप खूब इंजॉय कीजिएगा अपने अपने शहर में जो भी कनाडा डे एक्टिविटीज होंगी। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी स्वर का पला, हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन।

0: मालिक ने दुनिया बनाई न होती खुद।
1: जी हाँ, तो अब आपके वो ये गीत सुनाते हैं, रात नए थोड़ा सा नए वक्त सुनाते हैं, तो आपसे गा लेते, तो एंजॉय द सॉन्ग।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

सेज कंत नायो इव पयाविकार महला तीजा तन पर एह न आखिया न बहन इकट्ठे होए

भगत न होवई नाम ना लग प्यार सत गौर मिले पौ उपज पाए रंग सवार तन मन रत्ता रंग से हौ मैं तृष्णा मार मन तन निर्मल अत सोहना पेटिया कृष्ण मुरार

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर खूबसूरत सवेर, चढ़दी कला वाली सवेर, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू।

0: मिट्टी दी खुशबू पंजाब दा रंग रंग पंजाबी अपने दा प्यार सच्चे जज्बातां दा इकरार
1: तुसी सुन रहे हो रेडियो रंग पंजाबी।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callan to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तब व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे जी, चढ़दी कला च रहो। तुसीं साडी दिली अरदास हमेशा ही हुंदी है। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने उन्हां नूं भी निघी जी आखदे, क्योंकि अपना साथ हर एतवार

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल नू ना सीरियसली होई लग गई
0: हां
1: तू एवे कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं हुंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हां ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या क्या चीज चाहिए है थर्मस चाहिए है बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो एक ही काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां भी करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां ने ही करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरगा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: केड़ा ओ
0: जिने बच्चा ऑर्गेनाइज कीता पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना हो
0: वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करदे हुंदे ने दस जरा मेनू
0: नहीं भावे कुछ भी दे दा ये थोड़ा
1: लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखण काम भी देखण घर भी देखण डॉलर भी देखण सारा कुछ देखण है हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ
1: ਵੀ
0: ਇਹ ਕੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਨੀ
1: ਹੈਲੋ
0: ਨਾਲੇ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਕ ਪਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਫੇਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
1: ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
2: रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उना कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609

0: यार मैनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ दी?
1: ओए पागल सीगी।
0: क्यों?
1: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी ही ने रिंगटोन ते नची जाना।

0: gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave Tatla!
1: Good afternoon, welcome to Dave Tatla Show. Sultan ji, welcome to the show, sir.
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: की हाल चाल ने?
2: बिल्कुल ठीक जी, उपर आले दा शुक्र।
1: उपर आले दा दुआ कर्म होना बहुत जरूरी है, ते उदा धन्यवाद करना तुहाडा भी फर्ज बनदा, मेरा भी फर्ज बनदा, साडे लिसनर दा भी फर्ज बनदा।
2: बिल्कुल जी, डेफिनेटली।
1: उस तो बिना पत्ता नहीं हिलदा।
2: बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% इहदे च कोई दो राय नहीं।
1: अच्छा, आ जिहड़ा वीकेंड चल रहा
2: जी, कैनेडा डे वीकेंड।
1: कैनेडा डे, कैनेडा दा एक तरीक नूं होना, पर कैनेडा डे होना आया
2: है। बिल्कुल, ओदी रीजन ए है ना जी, इस वारी कैनेडा डे आया जी मिडल ऑफ द वीक, सो कंपनियां ने डिसाइड कीता कि बिफोर कैनेडा डे इस वीकेंड दे उपर ही डिस्काउंट दे दिते जान, सो अज कैनेडा डे दियां जिहड़ियां सेल हैगी

0: 6161।
1: कनेडा विच रहंदे होए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है।
0: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तां सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381।
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही ले हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381।
3: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardesradio.com ਜਾਂ www.deshpardestv.com। ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7।

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकदा है ना, जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदा जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने ते सानूं भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी, सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड, उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है, काफी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जुड़िया ने टाइम बीइंग वास्ते जड़िया सेलां लगदिया ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते हैं, फ्री गिफ्ट जड़े ने ज्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी, जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुम पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो, की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उसके गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोन मिल सकते ने जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोनों देन जा रही है जी मनु शर्मा होना का, कि थोनों पता है कि ओंटारियो के ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे हैं। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेज लई नवे फैसले न्यू डिसीजनस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो, सही कवरेज होना उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो, बिजनेस इंश्योरेंस ले बेटर कवरेज चाहते हो, रेट्स बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मनु शर्मा होरां दा नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी A&J ऑटोमोटिव रिपेयर दा नंबर भी थोनों दे दिने, कहिंदे कारां रिपेयर करदे आं असीं ते ऐसी नवी नवेकली कार बना दिंदे तो पता ही नहीं चलता। प्रोवाइड कर रहे ने नवे समर टायर्स, चेंज करदे ने टायर्स, व्हील अलाइनमेंट करवानी होवे, हर तरह का सस्पेंशन का काम करना होवे, इंजन का काम करवाना होवे, ब्रेकां का काम करवाना होवे, एग्जॉस्ट का काम करवाना होवे, ऑयल चेंज करवाना होवे, रस्ट प्रूफ करानी होवे गड्डी, तो बस फिर A&J ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हां दे कोल जांदे हो तो एक प्लस पॉइंट ये है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी, सो थोनों कितने भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हूँ उत्थे जाके किवें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता, फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊँगा मैं कितने होर जाना, तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो A&J ऑटोमोटिव रिपेयर तो तुसीं गेड़ा जरूर लगायो, 91 हेली रोड बोल्टन, हाईवे 50 ते मेफील्ड दा इंटरसैक्शन है जी, होम डिपो दे लागी है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726, नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर, इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।

0: जय माता दी, वेलकम।
1: टी
0: चलो एम 530। उम्मीद करदे हां सारे लिसनर बहुत वधिया होणगे ते चढ़दी कला विच होणगे। रब मेहर बनाई रखे, सब हसदे वसदे रहन। ते जी 7 वज चुके हन, असी अपना प्रोग्राम करन लगे हां शुरू। साडे प्रोग्राम दा नाम है जी तारे सितारे। अपने लिसनर्स नूं दस्सदी है कि असी हर संडे इस प्रोग्राम नूं 7 वजे तों लैके 8 वजे तक हाजिर हुंने हां। जिवें कि नाम तो ही पता चलता है, तारे सितारे साडा प्रोग्राम तुहाडी किस्मत कुंडली ग्रहां नाल जुड़िया होया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम दे विच असी एस्ट्रोलॉजी नाल रिलेटेड गलबात करदे हां।